ओके जी, फर्स्ट मैसेज कर दा सरदार यो नजीर चाहो तो सिर्फ मैसेजेस माय नेम वही जी आई एम हिना अफरीदी सलामा मैं वर्का हैंडसम गर्ल दा ओता चाहो के जी डेड सलमुना में हां चाहो के जी हिना अफरीदी हो रखे यो जहान मनना है वही जी हाय राज भैया आई एम हिना अफरीदी भाई अच्छा ना हो रिशा शो ना हो रिशा ओके जी हिना यो जहान मनना हिना अफरीदी

ठुलू मनन सीध ठुलू ठुलू ठुलू डीर मनना और शुक्र न पुत सुलगु मनना रोनेश मनना और अस्मतमान गग कुडुहान से मनन अस्मतमान से साबिया पूरे मनन सी तदर मनशे और महीन मनन सी और नर्स खुरे मनना खुशाल से और अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू अदर लॉन्ग टाइम डीर मनना ब्रिशना पूरे खुशाल से केदर मनशे ठुलू डीर मनना खाची चाहो इसमें से कोई जहान मनन सी थैंक यू सो मच सी।

अस्सलाम वालेकुम कस्टमर्स, वजन कम करना हो या वजन बढ़ाना, तशरीफ लाएं भट्टी शॉपिंग सेंटर छोटा बाजार, क्योंकि भट्टी शॉपिंग सेंटर पर केसन के नेचुरल प्रोडक्ट्स में आपके मसाइल का हल है जो यहाँ दस्तयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम कस्टमर्स, मैं कारी तहसीन तुराबी। अब कमजोरी को कहीं अलविदा केसन ताकत प्लस के साथ। केसन ताकत प्लस समेत केसन के तमाम प्रोडक्ट्स हाजी जरी एंड जनरल स्टोर जफराबाद में दस्तयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम कस्टमर्स, केसन ताकत प्लस, ताकत का खजाना, उमर जनरल स्टोर शेख यूसुफ दरबार वाली गली में भी दस्तयाब है।

सुनने वाले डियर स्मेल खान में तो 100% सुन रहे हैं, ट्रांक में 100% सुन रहे हैं, और पहाड़पुर के अंदर जो लोग हमें जी जनाब कोशिशों के साथ 91 या फिर 88 से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों को ढेर सारा वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का नाम है केसन टी टाइम शो। आज ना वो वक्त के जिसमें चाय के साथ हम केसन की बातें सुनते हैं, केसन की प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और अपनी चाय को मजीद जो है जायका बनाते हैं, कड़क बनाते हैं।

लेकिन अब खुदा का रूप इंसान के अंदर आ जाता है, बिल्कुल जब आप खुदा की सिफतों को अपने अंदर लेके आते हैं। सामिन किराम, एक आदत जो हमारे अंदर डिवेलप

लेके आते हैं। सामिन किराम, एक आदत जो हमारे अंदर डिवेलप हो चुकी है और पता नहीं क्यों डिवेलप हुई है हमारे अंदर, लेकिन ये बहुत ही बुरी आदत है और जितने जल्दी हम इस चीज से जान छुड़वा लें, तो जो बात मैं आपको करने वाला हूँ आप 100% इसके ऊपर जो है आप जो है पहन पहन के उनके ऊपर होती हैं, जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं और वो चीजें जब हमारे इस्तेमाल से बाहर हो जाती हैं, यानी कि अब उनको पहनने को दिल नहीं करता है, इस्तेमाल करने को दिल नहीं करता है, तो हम बड़े फखर के साथ कहते हैं ये किसी गरीब को दे दो, और साथ में एक लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं ये गरीब को दे दो सवाब मिलेगा। अच्छा वो चीज क्या ही सियानी अकल है हमारी, वो चीज जो हमारे काम की नहीं रही है, हमसे फारिग हो चुकी है और हम उसको अल्लाह की राह में दे रहे हैं, किसी गरीब की मदद कर रहे हैं और साथ में उस क्या दिन भन्नी त्रुटि है जनाब, उस खराब चीज के ऊपर भी हम अल्लाह ताला से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये पुराने कपड़े किसी गरीब को दे दो जना, ये जूते किसी गरीब को दे दो सवाब मिलेगा। क्या क्या सोच है हमारी ना, वो चीज जो हमसे फारिग हो चुकी है, जो हमारे काम की ही नहीं है और उसके ऊपर भी हम एक तमगा लगाते हैं कि भाई ये किसी गरीब को दे दो सवाब हो जाएगा, सवाब मिलेगा, यानी कि अपनी बची हुई चीजों को जो हमारे दिल से उतर चुकी हैं उन्हें अल्लाह की राह में देते हुए, ठीक है जनाब, हम बड़ा फखर महसूस करते हैं कि हम नेकी का काम कर रहे हैं। नहीं भाई, अपनी इस रविश को बदलने की कोशिश कीजिए और फिर अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली कुछ माह के अंदर देखिएगा। अल्लाह की राह में अच्छी से अच्छी चीज देना शुरू कीजिए, अच्छी से अच्छी चीज देना शुरू कीजिए। मैं अक्सर कहते रहता हूँ ना, दामाद आया हुआ हो या ससुराल वाले आए हुए हो तो जनाब तीन तीन डिशें बन जाती हैं, लेकिन जब खैरात के सोचते हैं तो क्या भाई छोले चढ़ा दो, चावलों में मुर्गी वाला गोश्त भी नहीं डालना है जनाब, गरीबों का गोश्त भी ना पहुंचे, चने खिलाओ जनाब, छोले खिलाओ गरीबों को, अल्लाह की राह में दे रहे हैं ना। लेकिन ये भी बात नहीं होती ना, जब बात खैरात की आती है तो हम कहते हैं भाई इस्तेतात इतनी है, तो भाई अपनों को खिलाने के लिए शादियां वलीमे करने के लिए तो हमारे पास इतने पैसे आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में देने के लिए भाई दिल से उतरी हुई चीजें क्यों देते हैं यार, दिल से उतरी हुई चीजें देते हैं। माइंड मत कीजिएगा, आप यकीन कीजिए कि हमारे मुआशरे के अंदर जो बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ नहीं सकता ना, कहा जाता है इसे मदरसे भेज दो, हैं ज़हनी तौर पर ये सही नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं पढ़ने के काबिल, इसकी ज़हन सही काम नहीं करता, इसे मदरसे भेज दो। मदारिस में कौन होते हैं, हमारे उलमा पैदा होते हैं जिनसे हम दीन सीखते हैं, जिनसे हम मसाइल सीखते हैं, और हम अपने दीन को फिर कैसी बुनियादी फराहम कर रहे होते हैं। ये हर कोई ऐसा नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लोग ऐसे ही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना जहीन फतीन बच्चा जो होगा वो कहे उसे बड़े मदरसे में भेज देंगे, उसे आलिम बनाएंगे, उसे हाफिज बनाएंगे, उसे कारी बनाएंगे, लेकिन बहुत दफा हमने ऐसा देखा है कि जो फालतू बच्चा है उसको मदरसे में भेज दो यार, ऐसा क्यों है यार, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं यार, दीन को हम इतनी क्यों कमजोर बुनियादें फराहम कर रहे हैं, अल्लाह की राह के अंदर हम क्यों दिल से उतरी हुई चीजें देते हैं यार, जनाब क्यों दिल से हम खैरात नहीं करते, क्यों दिल से चीजें गरीब को कोई नया जोड़ा दिलाकर, यार खुशी तो देखो तुम्हारा दिल कितना खुश होता है, किसी को नया सूट खरीद के दो ना, अपना उतरा हुआ जिसके रंग उड़ चुके हैं जी, जिसके धागे उतर चुके हैं, वही अल्लाह की राह में देना है जनाब, वही गरीब को देना है, पुराने जूते देने हैं गरीब को, नए क्यों नहीं दिला के दे सकते यार, उम्मीद तो कर रहे हो कि बड़ा सवाब मिलेगा, जो भी चीज अपनी दे रहा हूं तो फिर थोड़ा सा खर्चा भी कर डालो ना, अल्लाह ताला की जात तो इतनी जलाल और इज्जत वाली जात है, वो अपने ऊपर एक रुपया भी उधार नहीं रखती है, तुम जितना अच्छा दोगे वो भाई उससे और अच्छा तुम्हें देगा, जितना अच्छा, ये तजुर्बा करके देख लीजिए यार, ये तजुर्बा तो करके देखिए एक दफा, है जी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, अल्लाह की राह में अच्छा से अच्छा देकर देखें और फिर देखें कि वापस कितना अच्छा आता है। तो करके देखें एक दफा अल्लाह के ऊपर,
कर्ज भी वापस नहीं करते, 3-4 गुना 10 गुना 100 गुना तक आपकी नियत की मान जना हर रोज आप लोगों के साथ होते हैं इसे घंटे में 4 से 5 के घंटा ग्लोबल एफएम 91 रेडियो प्रोग्राम और ग्लोबल और रेडियो अमन के ऊपर एक साथ आप लोगों के साथ केसन का ये प्रोग्राम है जनाब, ढेर सारी बातें आप लोगों के साथ करते हैं हम और इसी उन्हीं बातों में कुछ अच्छी बातें भी होती है बल्कि सारे के सारे अच्छी बातें ही होती है चाहे हमारे प्रोडक्ट्स की हो चाहे आपकी सेहत की हो या फिर अपने आप की इसलाह करने की हो। तो जनाब केसन नेचुरल पाकिस्तान प्योर ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट आप लोगों तक पहुंचाती है और एक नहीं दो नहीं बल्कि हमने आप लोगों को दर्जनों प्रोडक्ट ऐसे दे दिए हैं, कोई नई नवेली कंपनी नहीं है जनाब, बरसों से आपके साथ हैं। और मैंने कल अपने शो के अंदर बात की कि सोप बेस जो है हमारी भाई ग्लैसरीन सोप बेस, ट्रांसपेरेंट सोप बेस और एक्नी सोप बेस जो है आ चुकी है। यकीन कीजिए 3-4 दुकानदार आए हमारी शॉप से लेकर के, यानी कि लोगों को इतनी जरूरत है इन चीजों की जो अवेलेबल नहीं थी और केसन ने आपको दे दी। अच्छा, जो बहनें मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं और वो सोप बेस को इस्तेमाल करती हैं और बिजनेस कर रही हैं, घर में साबुन बनाकर बेचती हैं या ब्यूटी पार्लर में करती हैं, हमने आपको 3 तरह की सोप बेस पहले दिए हुए हैं केसन के प्लेटफॉर्म से, ग्लैसरीन सोप बेस, देन एक्नी सोप बेस, मिल्की सोप बेस और चौथी सोप बेस आप लोगों को हम देने जा रहे हैं जाफरानी सोप बेस। ठीक है जनाब, ताकि जो लोग जाफरान का साबुन बनाना चाहते हैं उनको जाफरान की सोप बेस भी मिलेगी अगले हफ्ते से। ठीक है, अभी 3 तरह के वेरिएंट केसन शॉप पर आप आएंगे तो आपको मिलेंगे मिल्की सोप बेस हाफ केजी के अंदर है, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, पहली दफा हम आप लोगों को ये सब कम से कम वजन के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि किसी भी कंपनी की 1 किलो से कम में नहीं है लेकिन केसन आपको हाफ केजी आधे किलो के अंदर प्रोवाइड कर रही है। चारों किस्म की सोप बेसिस, मिल्की सोप बेस, एक्नी सोप बेस, ग्लैसरीन सोप बेस एंड देन नाउ जो हम नेक्स्ट आप लोगों को देने जा रहे हैं एंड इट विल बी केसन जाफरानी सोप बेस। ठीक है जी, ये भी आपको हाफ केजी में मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा नंबर नोट कीजिएगा या फिर आप डायरेक्ट हमारे शॉप पर आ सकते हैं क्योंकि ये शहर की लड़कियां ही सोप बेस को जानते हैं और उसको यूज करते हैं। तो आप केसन शॉप पर भी आ सकते हैं डायरेक्ट, या अगर आपका जो अपना दुकानदार है शॉप कीपर है जैसे कि अलफरीद कॉस्मेटिक है, जैसे कि मक्का कॉस्मेटिक है, जैसे कि शीश महल है, जैसे कि अमान अरसेरा, जैसे कि फारूक अरसेरा, ठीक है जनाब, इसके अलावा फैमिली शॉपिंग सेंटर, इन सब के पास जो है अमान शॉपिंग सेंटर और इसके साथ साथ वकास अमान हो गया, चाइना कॉस्मेटिक, गुलशन कैश एंड कैरी अमान, और इसके अलावा जो है एक और हमारे हैं A1 कॉस्मेटिक्स, तो आप यहाँ पर का सामान हो गया, चाइना कॉस्मेटिक, गुलशन कैश एंड कैरी अमान, और इसके अलावा जो है एक और हमारे हैं A1 कॉस्मेटिक्स, तो आप यहां पर भी हमारी ये सोप बेसिस जो है जो कि हाफ के जी में और इनकी कीमत 750 रुपए, 750 रुपए का हाफ के जी है। और अगर सोप बेस 144, सबसे बड़ी कंपनी केसन कंपनी जनाब जो आप लोगों के लिए हैंडक्राफ्टेड सोप तैयार करती है और जिसके अंदर हम आपको 7 किस्म के वेरिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं जनाब, मिल्की साबन जो कि गोट मिल्क से बना है, जाफरानी साबन जो कि जाफरान से बना हुआ है, राइस साबन जो कि राइस और हनी से बना हुआ है, कोजिक एसिड साबन जो कि कोजिक एसिड से बना हुआ है, उपटन सोप जो कि उपटन से बना हुआ है। ठीक है जनाब, उसके साथ साथ टी ट्री या नीम का साबन अपनी जगह पर, एक बहुत ही प्रीमियम किस्म का हमारा साबन है, ऐसी लड़कियां जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है तो वो केसन का जो गो पिंपल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और तुरंत जो है उसके रिजल्ट हासिल कर सकते हैं क्योंकि केसन के हर एक प्रोडक्ट नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और खालिस अज्जा से बनी है, यही वजह है कि आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। टांग के अंदर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त जनाब, तो टांग के अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट जैसे कि हमारी प्रोडक्ट ताकत प्लस, अच्छा जी ये जो ताकत प्लस प्रोडक्ट है हमारी ताकत प्लस, ये खून के ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, खून कि जिसके अंदर खून की कमी हो या जिसका खून खराब हो, खराब खून की क्या निशानी होती है, शफाफ खून की क्या अलामत होती है, शफाफ खून जिसका होगा उसके चेहरे के ऊपर रौनक होगी, चेहरा जला हुआ नहीं होगा, सूखा नहीं होगा, ठीक है जनाब, डल सा नहीं होगा, डलनेस नहीं होगी, और जिसका स्किन जिसका खून फ्रेश होगा, ठीक है जनाब, जिसका खून जो है फ्रेश होगा उसका चेहरा खिला खिला सा होगा, गुलाबी पिंक पिंक सा उसको नजर आएगा,
तो ब्लड का आपके जिस्म के अंदर बहुत बड़ा रोल है सामीन इकराम, और खून को साफ करने में और खून की मिकदार बढ़ाने में। आपके जिस्म के अंदर हीमोग्लोबिन जो होती है उसका एक लेवल होता है, एचबी लेवल जिसको कहते हैं, और ये 14 तक अगर होता है यूनिट्स के अंदर, 14 तक होता है तो ये नॉर्मल होता है, 12 से 14 के दरमियान नॉर्मल होता है। बहुत ज्यादा लोग खवातीन जब कमजोर हो जाती हैं तो उनका एचबी लेवल जो है वो 6-7 तक आ जाता है। तो फिर उसके बाद ताकत की लोग जो है इंजेक्शन लगवाते हैं, खून के इंजेक्शन लगवाते हैं, खून की ड्रिपे लगाते हैं, खून के सिरप पीते हैं जो कि एचबी लेवल को इंक्रीज करता है, और वो इंक्रीज जो होता है मुख्तलिफ तरीकों से इंक्रीज होता है, मुख्तलिफ टाइम के अंदर, यानी कि कितना टाइम लगता है उसको आपके एचबी लेवल को बढ़ाने में, खून की मिकदार को बढ़ाने के लिए एक खास वक्त होता है और उसके लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं। यकीन कीजिए कि मेरे ख्याल में कि अगर किसी औरत का एचबी लेवल 8 के ऊपर है और उसको अगर 11 तक ले आना है तो कम से कम उसे 8 से 10 हजार की ड्रिपें लगेंगी आयरन की, तब जाके वो औरत ठीक होगी। ठीक है जनाब, यही वजह है कि यकीन कीजिए जब लोग हमारी कोई चीज इस्तेमाल करते हैं ना, हमारी कोई चीज इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ जनाब, अगर किसी ने हमारी 300 रुपए की क्रीम खरीदी, मसला उसको है, उसने कहा मेरे दाग धब्बे हैं, हमने कहा आप इस्तेमाल करें। मैं आपको बताता हूँ जनाब, अगर किसी ने हमारी 300 रुपए की क्रीम खरीदी, मसला उसको है, उसने कहा मेरे दाग धब्बे हैं, हमने कहा आप इस्तेमाल करें। अच्छा, हमने उसकी स्किन को नहीं देखा कि उसकी स्किन की कितनी खराब है, सिर्फ इतना कह दिया कि भाई मुझे छाइयां हैं, कौन सी क्रीम इस्तेमाल को, हम कहते हैं भी ग्लूटा ले लो या जाफरानी ले लो। अच्छा, उसने इस्तेमाल की, 300 रुपए की क्रीम है, कोई 3,000 की तो नहीं है, 3 लाख की तो नहीं है, 3,000 की। तो जरूरी बात है कि अगर किसी का चेहरा बहुत ज्यादा खराब है तो भी उसे फर्क आएगा, छाइयां खत्म तो नहीं होंगी। ठीक है जनाब, यही छाइयां लेकर जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपको 10,000 की मेडिसिन लिखकर देगा उसे, और आपको कहेगा बहन 1 महीने तक इस्तेमाल करो, मुझे मिसकाल भी मत देना। हाँ, कोई मिसकाल नहीं करना, कोई मैसेज नहीं करना, बस इसको रात दिन लगाती रहो, फिर 1 महीने के बाद बात करेंगे। और यहाँ पर लोग हमारी एक क्रीम खरीदते हैं और आगे से बताते नहीं कि उनकी स्किन कितनी खराब है, और एक क्रीम लगाने के बाद कहते हैं भाई सही फर्क तो नहीं आया। और भाई स्किन की जो कंडीशन होगी उसके मुताबिक फर्क आया होगा ना, अब 300 रुपए के ऊपर चेहरा शीशा करके तो कोई नहीं देता। हाँ, जिसको मसला नहीं होगा तो उसके शीशा हो भी जाएगा, लेकिन जिसका जो है, अगर आप पिछले 4 महीने 5 महीने आपने गर्मी के गुजार लिए और चेहरा आपका सड़ गया है, जल गया है, और अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 300 रुपए की क्रीम आपके चेहरे को लश कर देगी, तो भाई ये आपका ख्वाब हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ रियलिटीज होती है जिसको मानना चाहिए। यही आप डॉक्टर के पास जाए तो 1 महीने तक आप उसे मिस कॉल भी नहीं करेंगे और 10,000 रुपए की क्रीमें भी लगा लेंगे, फिर भी जो फर्क आएगा आपको समझ आ जाएगी। इसी तरीके से जब हम ताकत की बात करते हैं कि ताकत प्लस कितना ताकतवर है, जब आप जिस भी औरत का एचबी लेवल जो है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है आपकी बॉडी के अंदर, अगर वो यूनिट्स में 7 के ऊपर ठहरा हुआ है तो बहुत कम है। जाहिर बात है आपको नॉर्मल करने के लिए 11 तक तो जाना चाहिए। अब 11 तक जाने के लिए आपको कितने सेब खाने पड़ेंगे, आपको कितनी ताकतवर वाली टेबलेट लेनी पड़ेंगी, सिरप लेने पड़ेंगे, इंजेक्शन आजकल 4,000 रुपए की एक ड्रिप आती है खून को एचबी का एक लेवल बढ़ाने के लिए, 4,000 रुपए की। तो अगर आपने 3 लेवल जाना है यानी 11 तक जाना है तो आपकी 10 से 12 हजार की ड्रिपें लगेंगी खून की, तब जाके आपकी ताकत का लेवल बैलेंस होगा। अब वहां पर डॉक्टरों के पास जाकर जो है लोग हजारों रुपए लगाते हैं, लेकिन जब हम आपको एक सस्ता तरीका बताते हैं तो उसमें आप सबर भी नहीं करते, आप उसमें वेट भी नहीं करते हैं कि भाई मेरे पैसे कितने लगे हैं यार। अगर हमने आपको कहा है कि ताकत प्लस ताकत देने वाला चीज कि भाई मेरे पैसे कितने लगे हैं यार, अगर हमने आपको कहा है कि ताकत प्लस ताकत देने वाला चीज है तो आपने कितने दिन उसको इस्तेमाल कर लिया। क्या बताते हैं तो उसमें आप सबर भी नहीं करते, 5 दिन इस्तेमाल कर लिए, 7
दिन इस्तेमाल कर लिए, कितना खर्चा कर लिए, 500 रुपया, 500 रुपया तो एक दिन बच्चे लगा लेते हैं, ठीक है, 500 रुपया तो एक ही दिन में बच्चे खा जाते हैं यार, 500 है क्या, तो भाई टाइम दिया करें, ठीक है जनाब, कीमत को देखा करें, उसका दूसरा वे भी ढूंढा करें कि ये तरीका तो मैं केसन के थ्रू इस्तेमाल कर रही हूं, अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए तो मेरा कितना खर्चा होगा। इसी तरीके से अब मैं आपको, मशीन है हमारे पास भाई, पता है आपको, है तो केस मशीन है भाई, ठीक है जनाब, और ये पहली प्रोडक्ट है जिसका साइंसी सबूत है कि ये प्रोडक्ट काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हम आपको कहते हैं कि 3 से 4 दिन केसन की वेट कम पेट कम को इस्तेमाल करें, ठीक है जनाब, और उसके बाद एक टेस्ट करा लें, लेबोरेटरी जाएं, अपने छोटे पेशाब का यूरिन का टेस्ट करा लें, उससे पूछें भाई मेरा कैसा है यूरिन, वो बताया कि नॉर्मल नहीं है भाई, हैं जी नॉर्मल नश्ता दे नॉर्मल, हैं जी इसके अंदर जो है चर्बी पिघल के आ रहा है, सो समझ जाना कि वेट कम पेट कम काम कर रही है। इसी तरीके से अगर आप एचबी लेवल अपना चेक कराते हैं कि 6-7 के ऊपर है, और अगर आपने एक महीना पूरा आपने ताकत प्लस को इस्तेमाल किया, तो फिर टेस्ट करा लीजिएगा कि आपका एचबी कहां तक गया है, क्या 2 लेवल ऊपर गया है, तो समझ जाना भाई आपकी ताकत प्लस ने काम किया। तो हम तो भाई आपको ऐसी हवा में बातें छोड़ते नहीं, हम आपको बताते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स को दूध का दूध और पानी का पानी करो, क्योंकि हम आप लोगों को खालिस प्रोडक्ट देते हैं, चाहे आप हमारा हाजमा कंट्रोल सिरप इस्तेमाल करें भाई, जितनी भी जलन हो रही हो आपके मैदे के अंदर भाई, किसी से कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके कंसल्टेंट है, हम आपके डॉक्टर है, और हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि बाजार में जाए, केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप खरीदे, ठीक है जनाब, 2 ही चम्मच आपकी जितनी भी जलन होगी आपके सीने के अंदर उसको खत्म कर देगा, ठीक है जनाब। इसके साथ साथ शिफा है दर्द हमारा ऑयल है, वो कौन है हमारे मास्टर फतेहुल्ला साहब, किधर है आजकल जनाब, उसका ही एहसान देखा, टांग से कुछ तो नहीं कर गए।

0: लेकिन वासन फतेला साहब कहते थे कि भाई मैं अपने जो है जोड़ों के दर्द के लिए मुल्तान तक गया और मैंने 25,000 सिर्फ किराया लगाया और डॉक्टर से जब दवाई लेकर आया तो इतना फर्क नहीं आया जितना केसन शिफाए दर्द इस्तेमाल करने से आया। और आप यकीन कीजिए, मैं कहता हूं भाई हमारी कंपनी इतनी जल्दी से तरक्की कैसे कर गई, लोग अभी दांतों में उंगलियां लेके बैठे होते हैं यार ये कल की कंपनी इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाने लगी है, है जनाब, और इतने काम काम के प्रोडक्ट बनाने लगी है, इसके पीछे हाथ किसका है? तो इसके पीछे दुआओं का हाथ है। और मैं कहता हूं कि हमें सबसे ज्यादा जो दुआएं मिली है ना इसी प्रोडक्ट के ऊपर मिली है कि लोगों के बहुत बरसों के बहुत पुराने जो मसले थे जो पुराने दर्द थे वो शिफाए दर्द से लोगों ने उनसे छुटकारा हासिल किया है। और वजह क्या है? वजह है कि जनाब हम आपको जो दर्द का पेन किलर दे रहे हैं वो शुतुरमुर्ग का तेल है, आम जड़ी बूटियों वाला तेल नहीं है। यानी कि हम अक्सर आपको ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो आपने पहले इस्तेमाल नहीं की होती। बहुत सारी चीजें आप देख रहे होंगे हमारी, जो नए नए लोग हमारे साथ ऐड हुए हैं, जनाब ऐसा फेस वॉश कभी नहीं देखा होगा, लवली फेस वॉश जो कि सिर्फ खवातीन के लिए है। आपने हमारे वेट कम पेट कम की तरह कोई प्रोडक्ट नहीं देखी होगी, आपने हमारे जो है ताकत प्लस की तरह कोई प्रोडक्ट नहीं देखी होगी, आपने हमारी केसन जोड़ी की तरह कोई प्रोडक्ट नहीं देखी होगी। तो भाई जिन लोगों को बाल लंबे करने का शौक है जनाब, बहुत सारे लोगों को अपने बालों से बड़ा प्यार होता है, यकीन कीजिए कुछ लोगों को अपने बालों से बड़ा प्यार होता है, ठीक है जनाब, और आप सोच नहीं सकते कि वो उनका कितना ख्याल रखते हैं, और जिनसे प्यार होता है फिर उनका ख्याल भी उतना ही रखा जाता है, है जनाब। तो कुछ लोग अपने क्या कहते हैं जनाब के बालों से बहुत इश्क करते हैं और बालों को हमेशा खूबसूरत रखना चाहते हैं। मेरे बेटे के बड़े प्यारे बाल हैं शाहजहन के, बहुत ही खूबसूरत बाल हैं, लोग उनसे देखकर इम्प्रेस होते हैं कि भाई क्या लगाते हैं, तो हम बोलते हैं भाई केसन और कुछ नहीं, पैदा हुआ है तो केसन लगाना इसने शुरू किया है और माशाल्लाह ये क्या कहते हैं मुंह बोलता सबूत है हमारे आयल का। किसी ने ओरिजिनल रिजल्ट देखने हो ना तो मेरा बेटा है शाहजहन, अभी वो 7-8 साल का है और उसके इतने बाल प्यारे हैं कि स्कूल की मैनेजमेंट ने भी उनको इजाजत दे दी है कि भाई हमारा दिल नहीं करता कि जैनू जो है अपने बाल कटवाए, हैं जी हमारे जो है स्कूल की खूबसूरती जो है ना वो जैनू है और जैनू के खूबसूरत बाल है, यानी कि बड़े बाल नहीं छोड़ते स्कूल वाले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके इतने प्यारे बाल हैं, इतने शाइन करते हुए बाल, इतने स्ट्रेट बाल और इतनी खूबसूरती उसके बालों के अंदर के जो स्कूल वाले हैं ना उसे वो भी कहते हैं कि भाई ना कटवाओ, है जी हमारे स्कूल का नाम है ये शाहजहन। तो ये तो भाई हमारे केसन हेयर ऑयल और शैम्पू का कमाल है क्योंकि हमारे घर के अंदर केसन के अलावा कोई और ब्रांड इस्तेमाल नहीं होता। और अगर आपको भी अपने बालों से प्यार है कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदेंगे केसन की, यार हर एक प्रोडक्ट लाजवाब है, हर एक प्रोडक्ट हमने इतने प्यार और खलूस और मोहब्बत से बनाई है कि हर प्रोडक्ट के अंदर हमारी जान बसी है। और जब आप इस्तेमाल करेंगे चाहे हमारा ऑयल है और हमारा शैम्पू, अभी इतना शार्ट है कि भाई हमारे अपने इस्तेमाल के लिए भी खत्म हो गया है, अपने इस्तेमाल के लिए भी नहीं बचा है, उसमें जो है कुछ डिले है प्रोडक्शन में, तो बॉटल की भी प्रोडक्शन होती है बाजू का तो, और डिमांड ऑलरेडी हमारे पास जो है स्टोर में काफी सारा शैम्पू था लेकिन डिमांड चुका अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मार्केट में अगर कोई शैम्पू लोग खरीद रहे हैं जी स्पेशली आपके इलाके में डेरा टांग और पाटपुर में तो केसन शैम्पू है, खरीद के देखिए। और हम आपको कहते हैं कि कोई बहुत से बड़ा ब्रांड, ये टांग वालों मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपके वाना के अंदर जो है कुछ अरसे के लिए हमारी कंपनी वहां पर हमने अपना बसेरा किया था तो फिर कुछ वजहों की बिना पर हमने वहां पर अपना सेटअप जो है बंद कर दिया, लेकिन लोगों ने 8-10 लाख की प्रोडक्ट हमने वहां पर बेच दी तो लोग तो दीवाने हो गए। अब यकीन कीजिए हर दूसरे तीसरे दिन जो हमें कॉल आती है भाई क्यों नहीं मिल रहा ऑयल वाना में, क्यों नहीं मिल रहा शैम्पू वाना में, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं मिल रही, तो हम कहते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर से आप लोगों के लिए कंटिन्यू करने वाले। तो वहां पर एक लेबोरेटरी में बंदा होता है वो कहते हैं यार आपके शैम्पू, तेल नहीं मैं बात कर रहा शैम्पू की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं यार आपका शैम्पू मैंने इस्तेमाल किया और मेरे बाल बहुत उलझे होते थे, बहुत प्यारे स्ट्रेट और चमक वाले हो गए। तो मेरे पास यहाँ पर जो भी कोई टेस्ट करवाने आता है ना तो वो मेरे बालों को देख कर कहते हैं तुम्हारे इतने प्यारे बाल क्या लगाते हो, तो मैं उसको बोलता हूँ कि केसन शैम्पू, कहते बाजार में मिलेगा, कहते नहीं इधर नहीं मिलेगा मैं अपने लिए डेरा से मंगवाता हूँ ना। तो इस दफा उसने ना कार्टन मंगवाया पूरा, तो मैंने कहा क्यों भाई, पहले भी वो दर्जन मंगवाता था, ये नहीं है कि पहले भी दो तीन मंगवाता, दर्जन मंगवाता फिर तीन चार महीने बाद फिर और मंगवा लेता, अभी उसने कार्टन मंगवाया। तो मैंने कहा वजह, कहते यार वो अब सब लोग मुझसे खरीदते हैं, मुझे कहते हैं ये वाला शैम्पू दे दो, यकीन कीजिए कहते हैं कि ये वाला शैम्पू ना हमें दे दो। तो भाई हम ऐसे तारीफे नहीं करते हैं, हमारी प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमारा केसन शैम्पू है तेरा अज़ा से मिलके बना हुआ है, तो आपको वो रिजल्ट देगा कि आपको इससे प्यार, जैसे आपको बालों से प्यार है तो एक दफा आपको शैम्पू से प्यार हो जाएगा। कॉल कर रहे हैं आप हमें 03-03-44-93-6-33-66 03-44-936-33-66 के ऊपर। पहले कॉलर है हमारे साथ और उन्हें मौका देते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या हाल है
0: जनाब? क्या हाल है जनाब? फैजान भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हो? फैजान मैं इतनी लंबी चौड़ी गाल की थी, क्या ही गाल दी समझ आई है, कोई ही गाल दी समझ आई है तो मैं को डसा दे। नहीं मैं आधा घंटा गाल जो की थी, कही गाल दी समझ आई है तो को जी। आए हाय फैजान भाई, झा चेंज करो, अपनी झा चेंज करो आवाज, कोशिश की किया करें जनाब की जब भी कॉल करते हैं तो भाई इधर उधर देखा करें इधर उधर देखा करें, यानी कि कोई ऊंची जगह पर चढ़ के बात किया करो, अगर सिग्नल वीक होते हैं आप लोगों के पास। जी जनाब, मोबाइल अपने हाथ में ले लें और डायल करें 03-44-936-3366। जी जनाब कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कौन है हमारे साथ जनाब, नाम बताएंगे अपना?
1: जी अब्दुल रज़ाक डबरे से।
0: अच्छा जी, माशाल्लाह आजकल डबरे से बड़े लोग हमें कॉल करते हैं। डबरा टांग से कितने फासले पर है? वीक होते हैं आप लोगों के पास जी, तो आपके यहाँ ये वाना के साइड में है? बिल्कुल। अच्छा जी, तो डबरा में आवाज सही आती है एफएम टांग की?
1: आवाज आपका स्टेशन का बहुत अच्छा रहता है, हम द्वारा वक्त भी सुनते हैं, बहुत मजा करता है।
0: अच्छा जी माशाल्लाह, हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं, 4 बजे वाला चाय वाला शो?
1: जी चाय वाला शो तो अभी हमने सुना है, दिखा जी
0: तो आज पहली दफा सुना है हमारा प्रोग्राम, जो इससे पहले भी सुनते रहते हैं, कम से कम एक महीना हो गया। एक महीना हो गया, तो आपका दिल करता है कि आप हमारी कोई चीज खरीदें, पैसे लगाएं हमारी चीजों के ऊपर?
1: आपका चीज जो है ना
0: जी, हेलो आके जनाब, भाई की आवाज कहीं गुम हो गई है, भाई जान मल गई है। अच्छा जी, ये इनके यहाँ आई थिंक नेटवर्क का इशू है, दूसरे बंदे की कॉल जाए, फिर से कॉल कीजिए कि जनाब 03-44-936-33-03-44-936-33-66। हमारे आपके इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट हैं और आपकी तमाम फिक्रों का हल है केसन के पास भाई, चाहे वो सेहत की फिक्र है, चाहे वो खूबसूरती की फिक्र है। अगर आपको ये फिक्र खाई जा रही है कि जी भाई लोग आपकी तारीफें क्यों नहीं करते, हैं जी ये भी एक फिक्र है ना, हैं जी लोग हमारी तारीफें क्यों नहीं करते जी। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर हमारे साथ हैं।
2: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, सही गोल की तरह ऐसा को हूँ
2: छोड़े में लंदन लगे हुए ऐसा इधर जो रहना तो नहीं पैकेज कराना पोसीना था ऐसा रात की थ्रा को मैं छोड़े सुन थोड़ा पैर बहुत।
0: अच्छा जी कितना 91 को सुन दे पैर मेरा ख्याल है अपने एफ एम को कुछ ठीक करो कि नवे पुरजे पवाओ उन्दे है जी,
2: आप देखने लेकिन चक्कर मजबूरी सारी मजबूरी कौन सी 91 लीड करते सुनते बैठे शहर के विचाले।
0: हाँ वो गल मैं की थी, मैं पहाड़पुर वाले साको किनू किनू गोली खड़े हो से 91 के जरिए
2: ये यकीन करके कि जे रहे ना बस जे रहे ना मैं बैर अपने वेड़े के बीच बह के दरमियान दरमियान बिल्कुल मैं बैर निकल तो बह के तेरे हुए मिला नहीं पिया डबरे वाला।
0: हाँ डबरे वाला बिल्कुल बिल्कुल मिला
2: तो कांड कटी गई है, तो मैं पहले चेक की।
0: بند کر دوں یقین کرو اصا جی بند کرنے کا سوچا عوام نے کہ نہیں یہ تو سارے فیوریٹ یہ کیسے بند کر سکتے ان بغیر تو منہ نہ دھو یعنی کہ ہوں جیسی بڑھ گئی ہے کسن کی وہ ہر بندے کی اپنی اپنی چوائس ہے
2: اپنا اپنا ایک جلد ہوندی اپنا اپنا خون ہے اپنا اپنا اپنی اپنی اللہ پاک نے طبیعت بنی خون چ وار کے ہر شہ چ وار کے کہندا کوئی رلدا نہیں کہ کیڑا جو رہنا فائدہ مند ہے کہ کوئی ہک شہ نہیں لگ جائے بے کو لگ جائے تو بند نہ کرو آخر اپنی حساب بند کرنے لیکن کئی مارو ہے لیکن پسند ہر بندے کہ
0: بالکل نہیں تو گال کریں پیسے کہ انہیں سوپ دی تھوڑی جی سیل کم ہے اساں کہ چلو انہوں کو کلوز کر دوں لیکن لوگ سکو بھی کلوز نہیں کرا دیں کہ نہیں بھائی اساں تا چاہے اسا ہزار لوگ ہیں یا 500 لوگ ہیں سب کو یہ شے چاہیے بھائی اسا ان علاوہ سب کوئی شے استعمال نہیں کرنی زعفرانی صابن یقین کرو سارا ایک ہفتہ جی شارٹ تھی ہے نا تو لوگ پانچ چھ چھ چکر لاندے رہنا اسا مو کہہ دے سے بھائی ملکی صابن پیے رائس ہے یا بھائی اور نہیں سکو جی سوٹ زعفرانی کریں اویں کوئی نہیں کریں اج ہر صابن تک اپنا کسٹمر ہر صابن رزلٹ دا سی تسا ایک دیہات راندے وے شانی موبائل زون تے سارا ہر صابن موجود ہے وجہ کہ جو کیا کو کیڑا چاہیے کیا کو زعفرانی چاہیے کیا کو ملکی کیا کو رائس ہر کہندے اپنی اپنی سکین تے اپنی اپنی چوائس
2: صاحب ملکی سوپ زیادہ چلتا ہوں تو سارے چلتے پہ ملکی سوپ اس مارے چلتا پہ جو انہوں نے میں کوئی آکھے جو ساری وا مسئلہ میرا ساخو کیونکہ اصا کاروبار ہی چونی پسینے چونی لیبر والے بندے کن کن سے ڈوئی ودے ان لیبر والوں کی شکا اگر کن اصا تو ساری تو لیبر رہی رہی یقین کرو اگر گھر والے باہر کی پوزیشن چاول ڈھونے کن سے پٹ کے چکوڑ سے ہر شہر گندگی انہوں نے کن سے شوڈن کی مجبوری ہے مزدوری ہے اگر اسے شکل گھر ونیا تو میں پاتا یا گلی چ بال دائر ویسن یا گھر والے آسن سارے گھر کو بھی آوار گئے تو اس قسم کے جو رہنا وہ جو رہے یہ صابن وہ آدم سا کوئی بن زیادہ کیونکہ چاول کے جو تعینات اصا لیں پے اس کے جو کنڈ سے لینے چین انہوں کے جو سبزہ ہے نا پترے جی گیچی چ لگتا ہے یا خالی جھا تے لگتا ہے تو انہوں کو الرجی تھی سر دن اصا ملکی سوپ جی استعمال کیا یقین کرو ساری اسی نال دھاندے پہ جی کرنے سکو ڈاکٹر دو یا ٹیكا یا ملاش والا نہیں لگا ساری الرجی ختم
0: کرش واسطے خشکی ختم کرنے واسطے ملکی صابن بہت ہی زبردست ہے بہت مہربانی صحیح شکریہ
2: باقی سارے ٹاک والا بھال پور تو نہیں آ سکتے کو سنتا پہ ٹاک والے سارے جتنے سارے پشتون میں جا سرائکی ان کو سلام آپ سوانا کو میرے ڈگ ڈگ سلام ساری بھیڑ وڈی بھیڑ ہے جڑا ہے نا اس کو میرے ڈگ ڈگ سلام السلام علیکم بہت شکریہ
0: جناب سانا آپ بھی سلام کہہ رہے ہیں جناب کیا نام ہے ہمارے پہاڑ پور سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پہاڑ پور میں ٹرانسمیشن ہمارے نہیں چل رہی لیکن جن کو ہم سے محبت ہوتی ہے وہ کہاں چھوڑتی ہے ملا کہاں چھوڑتے ہیں بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتے تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب 03449363366 کے اوپر اچھا جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی السلام علیکم ہیلو جی کون ہے ہمارے ساتھ نام بتائیں گے اپنا ہیلو
3: ایفی جان بات کر رہی ہوں
0: ایفی جان بات کر رہی ہوں یعنی کہ وہ والی ایف ہیپی افرا ہیں جی
3: جی بالکل
0: کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آج کسٹمر نے بھی اور ہم نے بھی آپ کی آواز بھی سن لی ماشاءاللہ

0: अच्छे हैं, खैरियत से हैं, ठीक हैं आप? अब सैड तो नहीं है ना आप? लिया हेलो।
1: नहीं, अब तो मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छे जी, खुश हैं। चलो अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। हम कहते हैं कि जो माथे के ऊपर की सैड वैड बिल्कुल भी नहीं होना है, और अपने नाम की तरह हैप्पी शैपी रहना है, ठीक है?
1: जी,
0: प्रोग्राम सुन रही है, कैसा लग रहा है आपको? बोर तो नहीं हो रही
1: लिए?
0: जी
1: जी,
0: मैंने क्या प्रोग्राम सुन
1: मैंने
0: रही?
1: अपनी नानी के लिए वो खरीदा है,
0: क्या खरीदा है?
1: मैदे वाला सिरप नहीं है,
0: अच्छा मैदे वाला सिरप
1: केसन का। जी, वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह।
0: अच्छा जी, कैसा? जलन
1: और
0: वगैरह
1: मेरा
0: खत्म
1: नानी
0: हो गई?
1: इस्तेमाल भी कर रही है।
0: जलन वगैरह खत्म हो गई?
1: जी बिल्कुल, मेरी नानी कहती है कि बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका।
0: हाँ, वो नेचुरल चीजें हैं केसन की, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको रिजल्ट फिर उनके कैसे नहीं मिलेंगे? तो नानी के लिए ताकत प्लस कब ले रही हैं? असल चीज तो उनको जरूरत है ना 50 साल के बाद। उम्र कितनी है आपकी नानी की?
1: ये तो मुझे नहीं
0: अब
1: पता
0: ये मत
1: लेकिन
0: कहना कि मेरी नानी
1: होंगी
0: जो है 37 साल की है। हैं जी, औरतें तो उम्र नहीं बताती ना। होंगी ना 70 प्लस तो होंगी, 60 प्लस तो होंगी,
1: हाँ, इससे भी ज्यादा होंगी।
0: इससे भी ज्यादा होंगी। तो 50 साल के बाद जो होती है ना, वो कमजोरी बुजुर्गों को शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी खुराक वो सही तरीके से नहीं ले पाते ना। लेकिन ये जो खुराक है, ये याददाश्त भी तेज करेगी, ठीक है? उनको भूलने की आदत भी खत्म होगी, उठना बैठना चलना फिरना, जिस्म के अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, सुस्ती खत्म हो जाएगी। ये उनके लिए बहुत जरूरी है। वो हाजमा कंट्रोल तो है भी है ना, वो तो हाजमे के लिए है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ना, तो आप अपनी जो पैसे शैसे जमा करती रहती हो ना, है जी, पॉकेट मनी जो होती है, उसमें से 1-500 रुपए नानी के ऊपर लगा दो। कुछ जमीने शमीने है नानी की? कुछ हिस्सा दे के जाएंगे या नहीं? कुछ जमीने शमीने है नानी की? है?
1: आपकी आवाज साफ नहीं।
0: मैंने कहा नानी की कुछ विरासत में कुछ है, कोई माल तरका है, ये खाली खुली है?
1: है बस बहुत है।
0: अच्छा, तो फिर आप ऐसा करें, उनकी खिदमत करें।
1: नानी हमारे घर रहती है ना।
0: अच्छा, नानी आप,
1: क्योंकि मेरा मामू नहीं है तो फिर वो हमारे घर रहती
0: अच्छा,
1: है।
0: नानी आप, अच्छा आप उनकी उनकी दुआएं लेने के लिए ना ताकत प्लस उनको जरूर पिलाएं। आप एक जार उनको पिलाकर देखें, वो कितनी ताकत आती है उनके अंदर। कमजोरी होती है बूढ़ों के अंदर ना, ठीक है? हैप्पी
1: बहुत ज्यादा।
0: तो आपने जरूर जो है ना पहली फुर्सत में जाना है, हाजी जरी जनरल स्टोर जफराबाद में आप रहती है ना, तो उधर से आपने खरीदना है। हाजी जरी का स्टोर आपने देखा हुआ है जफराबाद में?
1: जी देखा हुआ है।
0: कैसे केसर के प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर, सारे पड़े होते हैं?
1: हाँ, मैं उस दिन गई थी ना वो नानी का।
0: अच्छा अच्छा, तो उन्हीं के पास हमारे सारे प्रोडक्ट होते हैं। और अभी अगली दफा आपने नानी को गिफ्ट करना है ताकत प्लस, ठीक हो गया इफ्रा?
1: जी बिल्कुल, जरूर।
0: ओके जी, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ ही, अल्लाह हाफिज जनाब। आप भी हमें ज्वाइन करना है 03449363333 के ऊपर। इफ्रा, हैप्पी इफ्रा थी हमारे साथ, कहती है हमें सैड वैड नहीं होती, ठीक है जनाब? अब हैप्पी हूँ मैं। और हैप्पी इफ्रा ने अपनी नानी के लिए जनाब हाजमा कंट्रोल सिरप खरीदा है। कोई भी प्रोडक्ट आप अपनी फिकर के लिए खरीदेंगे, स्किन की फिकर है तो ग्लूटा सांवलेपन का फिकर है तो केसन ग्लूटा वाइट क्रीम खरीदे, छाइयों की फिकर है तो केसन की जाफरानी क्रीम खरीदे, स्किन को ग्लो देना है, चेहरे को नर्म और मुलायम बनाना है तो केसन का मिल्की साबुन खरीदे। कालर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, खलील भाई से बात कर रहे हैं?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन सा रिनाल से? जी मुलाजिम दुकानदार परदेसी। भाई मुलाजिम भाई की में हाल है? चंगे वदे वे तुसां, ठीक ठाक?
2: खैर खैरियत अल्लाह फरमाने अल्लाह सारे प्रोडक्ट आ गए सारे कोल ते इंशाल्लाह तेल दे रिशा कोई मंगने तो सारे कोल नहीं आदे ते वातो मंगवा छोड़े ने।
0: अच्छा चलो अच्छी गाल है। तेल ते शैंपू पहुंचे तो पहले मैं कोई दसो, तेल ते शैंपू केसन दा वाला आला तेल ते शैंपू पहुंचे तुहाडे कोल? अच्छा चलो ठीक है ठीक है। रनवाल के अंदर भी जितने लोग सुन रहे हैं, हमारी बहने भाई बुजुर्ग जितने भी हैं, जिनको कोई भी चीज केसन की चाहिए, चाहे शिफाय दर्द है, ताकत प्लस है, वेट कम पेट कम है, हाजमा कंट्रोल है, ऑयल है, शैम्पू है, ये चीजें सारी आप मुलाजिम भाई के पास जाएं। और इनका सुहेल मदरसा के साथ जो है इनके स्टोर है, क्या नाम है स्टोर का? स्टोर का नाम है या नहीं है? दुकान नाम नहीं होता वहाँ पर?
2: دکان دانا تو بس ملازم دکاندار ہماری دکان ہے تو گھر ہی مل دیں پروڈکٹ دکان پہ مل دیں.
0: اچھا جی یہ بہنیں جتنی سن رہی ہیں ہماری مائیں سن رہی ہیں بھائی آپ کے لیے آسانی ہے کہ یہ ملازم دکاندار جو ہیں ان کے گھر کے اندر بھی کیسن کے پروڈکٹ سارے موجود ہیں اور آپ ان سے طلب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بھائی؟
2: بالکل.
0: بس ملازم دکاندار نزد مدرسہ سہیل. ٹھیک ہے جی.
2: جی جی تو نعمان شیخ ہوں جی.
0: جی ہوں نعمان بھائی ہوتا
2: نعمان شیخ اس میں سلام دیا ملازم دکاندار
0: جی. سلام سلام تورے پہنچ گئے. ٹھیک ہو گیا جناب بہت شکریہ. اور آپ لوگ آ رہے ہیں جوائن کر رہے ہیں جناب آپ کی ہر فکر کا حل ہے کیسن کے پاس. سردیاں آنے والی ہیں آپ لوگوں کے لیے کیسن کی پروڈکٹ منتظر ہیں. کیسن کا لوشن اپنے چہرے کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے, کیسن کا لپ آئل ہونٹوں کو نرم و ملائم اور پنک بنانے کے لیے, کیسن کی کولڈ کریم, کیسن کی کریک ریلیف کریم, یعنی کہ چار پروڈکٹ جو ہے تو وہ تو صرف آپ کی سردیوں کے لیے ہیں جو کیسن نے تیار کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی موسم نہیں آیا لیکن ہم آپ کو پہلے سے آگاہ کر رہے ہیں. کیسن کی کولڈ کریم, کیسن کا لولی لوشن, کیسن کا موئسچرائزنگ لپ آئل, کیسن کی کریک ریلیف کریم, یہ پیور سردیوں کے پروڈکٹ ہیں جناب جن کو آپ سردیوں میں استعمال کرتے ہیں. اور جی جناب کال کریں گے ہمیں آپ اور آپ لوگوں کی کال جو ہے وہ ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کیوں جو ہماری سونیا وان آپ ہی ہیں بے ادبی ہو گئی ہے ان کی کال کٹ گئی میرے ہاتھ سے. اب معافی مل جائے ہمیں. السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: جناب کون ہیں جی نام بتائیں گے اپنا.
3: مامون.
0: مامون مامون ٹانک سے. بہت یونیک نام نہیں ہے مامون؟
3: مامون
0: ہاں نون نکال لیں نون غنا ڈال لیں تو ہو جائے گا مامون. ہے جی
3: اگر ایم اے نکال لو تو مون بن جائے گا.
0: جی اچھا یہ نکالو تو مون بن جائے گا, میم کو نکالو تو پھر مون بن جائے گا. تو آپ کو پھر مون کہتے ہوں گے
3: جی.
0: آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مون کہتے ہیں ویسے؟
3: مون جی کہتے ہیں گھر میں.
0: اچھا تو امی ابو سے کہتے یہ امی ابا کیوں ہی میم نال ایکسٹرا پاتا ہی وے وہ ایک مون رہا ہوا تھا. ٹھیک نہیں مون بھی تھے مون بھی تھے مونا بھی تھی سکتے ویسے ہے جی. بڑا پیارا نا یار ان کو کتنے نام بن دے منا منی مون سارے نا منی کا کیا مطلب ہوں منی منا نے سمجھ آنی منی کا کیا مطلب ہوں پتا ہے کون پتا. اچھا مون برا کی حال ہے چنگے ودے ہوئے ٹھیک ٹھاک مون لال کر چمکتے ودے ہوئے یا گرمی تو والے حال بحال کر چھوڑا ہے؟
3: گرمی
0: یعنی کہ ہوں تو کالے پیلے مون ہوئے چیٹے مون چیٹے مون کی بن سو پہلے میں پہ دسو
3: چیٹا مون اسمان تے کالا مون زمین تے
0: اسا زمین تے جو بنا دوں تو مون چیٹا وات منے سو سا کو کیسن کو تو کیسن دی گلوٹا وائٹ کریم گنو تے نال کیسن دا گلوٹا وائٹ صابن یا فیس واش گنو تو اپنے آپ کو منہ نہ لے کر چٹا بڑھنا دیکھو بات دیوالوں کو پہلے منہ دا علاج تو کروں تارا پہلے منہ دا یار جیرا نہ ہے تے گرمی نے تو کو بےحال کر جوڑا ہے تے پہلے منہ دا علاج نہ کرو بعد ہی والا دو کہ ڈریک والا دو اچھا ڈوئے کٹھے یعنی کہ تو سادے منہ کو چٹا کرو پھٹا ودا جے راتے جے وال جے خراب تھا ودے تو نہ کو صحیح کرو وقت تو را تقریبا جے رہے ہے 1500 دا خرچہ تھی ویسی اے
3: خرچہ جان زیادہ ہے
0: 1500 نکلا سی جیب کول بس تسا صحیح میں کرنا ہے جیب دی 1500 پاونا ہے پنجا ایکسٹرا گن کے ونجے او پاپا لئی والے چھولے کھوائے چا نال ون کے منصور دے نال پاپا لئی والے چھولے کھانے ہوندے بیٹا کی مزہ کرندے نا یار وہ بندہ دے میرے پاپا لئی والے جڑے چھولے ہن وادے کراچی تک وینن دبئی تک وینن سعودی عرب گل سچی ہے کہ نہ کوڑے अच्छा आज का लोगों में डिश पा के देना या प्लेट ही पा के देना है पापा लई आला
3: प्लेट ही पा के देना
0: कीमा सट के देना हो तो कीमा
3: अगर किलो गिनता बात तो प्लेट देना जो अगर पंजा सौ गिनता प्लेट ही देना
0: प्लेट ही जो गिनो प्लेट सौ दिए जो पंजा दिए आज कल था
3: प्लेट सौ दिए
0: कीमे कीमा हो तो पा के देना थोड़ा जो कीमा से टेंदा है वो ना
3: जी थोड़ा सा टाइम गोश्त होगा थोड़ा जी
0: अच्छा जी गोश्त होना यानी कि पापा लैया तुसा एंजॉय करें दे वदे पापा लैया तो सारे डेरे स्टार्ट थिया आई लाइक नहीं था कामयाब नहीं थी सगा उन्हें सबर नहीं किता असल जो एक महीना इतना रह के लगा गया लोगों को पता नहीं लगा कि भाई पापा लैया दे जेरे छोले इन तो टांग दे मशहूर छोले इन यार असल जनन वेंदे से ना टांग पहले वन की ब्रेक सारी गड्डी लगदी पापा लैया दे उते ठीक है उतु वन के खांदे से छोले ठीक है जनाब बोतल शोतल पी के बाद अगू तो निकल रही यानी कि पहला स्टाप पापा लाइया तो आंदा चलो बहरहाल तो अपने शहर की डिश है बड़ी जबरदस्त डिश है तुसा इवें करना है सही हिक ता आयल शैम्पू सारा केसन ना मिल दे रात को तुसा ला सो तेल ठीक है सर रात ले पूरी रात ला के समना है सवेरे शैम्पू नाल धो गिनना है वालों को
3: ठीक
0: है ते बाकी नाल तुसा गिननी है ग्लूटा क्रीम ते ग्लूटा साबण साबण ना मुंह को दो सो रू दफा लेकिन क्रीम को रात ले तुसा लाना है तो इनशाला मुंह भी चिट्टा ते वाल भी काले इंशाल्लाह 1500 रुपए ना बुला के तो कुछ जवान करे सु ते सोना करे सु तो इंशाल्लाह ठीक है
3: ठीक
0: मंसूर जनरल स्टोर ए जेले चार शिया गिनन वैसो ना ही गिफ्ट होसी सारी तरफ उतारो कैसे होसी पूछो परफ्यूम तो को गिफ्ट दे सु चार शिया दे अकबर वाला परफ्यूम लेकिन उसी जा देते मंसूर जनरल स्टोर केरी मार्केट है सदाम प्लाजा रमजान मार्केट जे को आदन उथे वैसो ए चार शिया गिनसो तो को आके खलील भाई ने आके कि नाल अकबर वाला परफ्यूम ही दो हैं जी जेरा मेरी शान ही वधावे ठीक दे गया फ्री मिल सी अकबर परफ्यूम तो अपना
3: अकबर मेरे प्लीज है ना
0: अकबर मेरे प्यू तो ना चल बात बहुत ही गाल है कल कोई बंदा आया उन्हें ये गाल की थी यार अकबर मेरा मामा है कि कौन है कोई गाल है इसे अली अकबर फातिमा तुज़ारा दे नाते ज़ारा पर व्यू पे अकबर बहुत सारे लोगों ने ना होंदा प्यारा ना अकबर का मतलब है कि बड़ाई आला ठीक है जी वाले साहब भी तुम्हारे माशाल्लाह बड़ाई आले उसने थे अकबर गिन के उन्हों को गिफ्ट करा के अब्बा तुम्हारा ना अकबर थे परफ्यूम ही अकबर आ गया ठीक है आगे जी वो मेहरबानी शुक्रिया जनाब डाक से हमारे साथ मौजूद थे भाई इनका नाम है मामून लेकिन जनाब बिगड़ बिगड़ के इनका नाम मुन्ना हो जाता है कभी और कभी कभी इनका नाम हो जाता है मून लेकिन आजकल गर्मी गुजारने के बाद ये मून नहीं रहे हैं जनाब बिल्कुल भी है जी ने वो कहते हैं ना इमरान खान साहब आप वजीर आजम नहीं रहे तो ये भी अब जो है मून बिल्कुल नहीं रहे तो हमने कहा फिर से आपको मून बनाएंगे केसन की ग्लूटा वाइट क्रीम और केसन के ग्लूटा वाइट फेस वॉश खरीदेंगे साथ में आयल केसन का और केसन का शैम्पू आप यकीन कीजिए आपको बालों से अगर प्यार है तो इससे बड़ी चॉइस आपके पास नहीं हो सकती है क्योंकि जनाब ये जो ऑयल और शैम्पू की जोड़ी है ये 30 अज्जा पर मुश्तमिल है कोई माई का लाल नहीं है मार्केट में जो इतनी सारी चीजें डालकर आपको ऑयल और शैम्पू के अंदर दे जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि 30 चीजें शामिल हैं 30 चीजें ठीक है जनाब इसके अंदर 13 अज्जा है शैम्पू के अंदर और 17 अज्जा है तेल के अंदर जब 13 चीजें आपके बालों में जाएंगी तो बालों के अंदर जान कैसे नहीं आएगी।

0: जनाब। हेलो खलील भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बाल बहुत पतले हैं जनाब, पतले हैं। बाल मजबूत करने के लिए कोई चीज बताएं। मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त मार्केट का सबसे जो ताकतवर ऑयल है ना, वो केसन हेयर ऑयल है। इसको इस्तेमाल करके देखिए, ये आपके बालों को, बाल आपके कमजोर हैं, गिरते हैं या टूटते हैं, हम आपको सिर्फ एक हफ्ते का टाइम देते हैं। एक हफ्ता इसको लगाएं और उसके बाद अपने घर के किसी मासूम बच्चे को अपने बालों के ऊपर छोड़ दें। हैं जी, उकवाको के भाई छिक के दिखा केरी जा तो देखो बाल पटी नैन, तो बिल्कुल भी बाल नहीं नीचे गिरेंगे, क्योंकि जनाब बालों को इंतहाई कमजोर बालों को जो है आपको जड़ों से मजबूत करने वाला तेल केसन का हेयर ऑयल इस्तेमाल करें। छोटी बोतल 480 रुपए की हो गई है अभी, पहले थोड़ी सी कम कीमत थी, अभी महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल महंगा हुआ है तो 30-40 रुपए इसकी कीमत बढ़ गई है। ऑयल जो है 480 रुपए का छोटा मिलेगा आपको, बड़ा अभी भी 750 रुपए का है। तो सियाने बंदे वही है जो अब बड़ा ऑयल लेंगे, क्योंकि छोटा 480 का है हो गया है और बड़ा अब भी 750 रुपए का है। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यासीन है, कहते हैं कि हाजमा कंट्रोल इस्तेमाल कैसे करना है। हाजमा कंट्रोल इस्तेमाल को, हाजमा कंट्रोल सिरप भाई आपने खाने के बाद 2 चम्मच लेना है इसको, ठीक है जनाब। दो तरह के मसाइल होते हैं, अगर आपको भूख नहीं लगती तो खाने से पहले खाएं भूख बढ़ाने के लिए, और अगर आपको बदहजमी का मसला है, गैस का मसला है, उफारा होता है, पेट फूल जाता है, गैस हो जाती है, तेजाबियत हो जाती है सीने के अंदर, खाना खाने के बाद जलन होती है या बोझ महसूस होता है, तो खाना खाने के बाद आपने 2 चम्मच तुरंत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जनाब। और अगले 5 मिनट के अंदर आप सेहतमंद हो चुके होंगे, यानी कि अगले 5 मिनट के अंदर आपकी तेजाबियत खत्म हो जाएगी। दुर्याधन हमारे साथ हैं, स्वीट वाली दुर्याधन। दुर्याधन कैसी, आप ठीक हैं? केसन का दुर्याधन परफ्यूम भी आना है, पता हो आपको। यूजर ऑफ ओनली केसन नेचुरल पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद जी, हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप भी अटेंडेंस लगा दें, सलाम टू मिसिंग सिस्टर्स। सबसे पहले तो बड़ी मिसिंग तो आप हैं हमारे पास। हिम्मत से सलमान हमारे साथ हैं, सलाम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और उसके अलावा जो है शेर भी साथ में कह रहे हैं। टांग के अंदर, डेरा के अंदर आपको हमारे प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मिलती है? जफराबाद के अंदर हाजी जरी जनरल स्टोर, खरोटी मार्केट के बिल्कुल सामने है, वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा चुगल्ले के साथ सारी दुकानें भरी पड़ी हैं केसन से, अमान जनरल स्टोर, फारूक जनरल स्टोर, शीश महल, फरीद कॉस्मेटिक, मैटिक मक्का कॉस्मेटिक, इसके अलावा गुलशन कैच एंड कैरी। जनाब इस्मत खान का सबसे बड़ा ग्रोसरी स्टोर है जनाब, यहाँ पर आपको केसन के तमाम खाने भरे हुए मिलेंगे जनाब। इसके अलावा जनाब यूसुफ चौक के ऊपर मजार वाली गली में है उमर जनरल स्टोर जनाब, वहां पर दरबार वाली गली में जाएंगे वहां पर प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके अलावा यूसुफ चौक के ऊपर है जाहिद शॉपिंग सेंटर जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, हाल खलील भाई
0: जनाब, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अपना सोना थे मिठा थे प्यारा थे सोना ना से सोचा पहली दफा कॉल की थी बिरा
1: चौथी दफा
0: चौथी दफा मैं को अपनी आवाज सुना चुके तो मैं को तो आवाज याद कोनी
1: कल मैं कॉल की थी।
0: अच्छा ना आवाज करती थी, केरा ना उस्मान ना दस है उस्मान
1: सलमान
0: सलमान सलमान भी की में हाल है? ठीक ठाक भी तुसा
1: खैर शुक्र है।
0: चाह पीती बैठे हुए, मेरी हाल तक कप नहीं मुकदा पिया, 4 बजे तक पीवन लगा मैं को।
1: चाह पीती बैठा सा तो 2 बजे पके ना फिरा
0: आजम दी गई उसी तौरी 2 बजे वाली यार खीर अपना होंगे खालिस नाल पत्ती ते चीनी तौरे कोल होंगी उसी शापर दी पके ने होंगे शापर दी पके ने चाह
1: नहीं ही पके ने देगड़ी
0: शापर ही पकती थे यार अगर पका होता
1: इस्तेमाल
0: शुरू किया
1: कल रात ताकत प्लस किया
0: پہلے پہلے ریزلٹ مل گیا یہ ریزلٹ وال اگر کوئی شیمپو تے اڑا دے نا وہ مصیبت دے ٹھیک ہے جناب اگر تیرے وال نہیں اڑے تو تسا آرام سے کنگی کر چھوڑی تھی ڈاچ ڈا نمبر دو چا سارے شیمپو کو تیل جو لے وے کوئی سرانا وہانا وغیرہ خراب تو نہیں تھیا
2: ریڈیو امن جوان رنگ امن You are listening to Radio Amad Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: بیماری کغٹوی او کوڑوی ددی علاج کول بے انتہا ضروری دا زکه چه کموش خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دیل وجه نه نوری بیماری گانه هم مشته لگی دای سی نو کو ستاسو مختلفو بیماری گانو لو وجه نه پریشان ایو نو بیا دی خپل علاج دے پارا نن رایسو الشفا دواخانه تا الشفا دواخانه شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
3: 88.4 Radio 88.4
4: Your station. Ilm o agahi, tanz o maza aur khushhali o istehkam ka haseen sangam. Aap sun rahe hain Radio Aman 88.4 Dark.
5: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

एक संगे जी मुसरत मुस्कान हूँ मैं सू आई महीन है? अच्छा महीन है मेरा मेरा नाम महीन खुर खुशाल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू बाय कैसे बाय तत्सलाम भाई डॉक्टर सर आई मुसरत हो रही अभी वफा भी चिन्नी मना रही मिले गुल फरम मिले मेरा आल दिलाना अजमन रजिया वरिशा है नवका मरंग में सुदुल्ला इला खैदरी नाजमीन तत्सलाम शाजी को सलाम वालेकुम सलाम बख्तवरा लगता है ये मरो तो मेरा भाई था अच्छा जान सलाम में वरका हो रेहान सारा फरमुला किरण साबिया दिलान रमीन मीनाल लैला हैदरी वरिशा मुख्तवरा शाहजन याब रुबाब सब सिस्टर को सलाम मीराल बिछनी ओके हो रहे कदर मनुष्य

रणा कर ये हर फिर सा नमस्कार नमस्कार को मोमेल विव्या फोडेरा विवाह वक्त कहना बिल्कुल जी राइट पूरे हंडी रे मने भाई जाना हाँ कभी रेडियो लतीफा में वो रे दा सामने रे में वो खंडल भाई जाना मक्का वा दा चक्का वे

वही ची तो बा फिर वो मुझे दे दो जब आपको मिल जाए सी फिर तो समा गुस्सा हो रही शां प्लीज तो समा गुस्सा हो रही सांस रख के तो ले बस प्रोग्राम टाइम पर रश हुए थे फिर मैंने देखी रिवी इस मिनट के पास शिखा नजमान भाई मुबारक शाह आरिफ डेरे मन नजी अरे भाई उनका इनाम गिटे लेखा रजा सब सब गुम दे ना गिफ्ट नंबर शैली शिखा अभी बढ़िया ऑपरेशन के समय स्पिन बालेंगे को दास से स्पिन ने कहो के ना दिन आप गंडपुर मैसेज दे मिल दे मुबारक शाह डेरा मन नजी नाव के सवा तो उत्तर पता लगी तो पता नहीं जब कुर के मड़े खुरी मड़े बने खुरी खा